0: जी हाँ बिल्कुल, दिन में हुई कैसी चांदनी। कैसे हैं आप सभी, रेडियो के जय का साथ है, मैं हूँ आपके साथ आरजे कृष्ण, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी प्यारी दुलारी आरजे जी भी। कैसी हैं आप?
1: हम पूरी तरह ठीक नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली हमारे लिसनर्स के लिए हमें वापस आना ही था, तो आप सबको गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज के साथ आपकी प्यारी आपकी दुलारी सीधी सादी बोली वाली आरजे जी भी, और फीजी के खट्टे पर चटाक मटाक के साथ आपके आरजे कृष आपका रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं। कैसे हैं आप सभी, कैसा जा रहा है न्यूजीलैंड वालों आपका मटरिकी वाला पब्लिक हॉलीडे, एंड बाकी जितने लोग हैं जो दूसरे कंट्री से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज का दिन आपका कैसे जा रहा है?
0: जी हाँ बिल्कुल, और चले जब हम, जैसे हमने कहा कि रेडियो केजे का ये मकसद रहता है कि हमारे पास अगर कोई रिक्वेस्ट या कोई डेडिकेशन है गीत का, तो हम जरूर उसको प्ले करते हैं हमारे तरफ से, या हमारे एक आर्डेंट लिसनर है जो हर वीकेंड हमारे साथ शामिल हो जाते हैं उधर क्राइस्टचर्च में प्रिजन से, नीरज जी। नीरज जी, आज आपका सन, इनका आज हैप्पी बर्थडे है, तो हमारी तरफ से रेडियो केजे की तरफ से, रेडियो केजे के एंटायर टीम की तरफ से, अब फैमिली इसके समझ, हम कह रहे थे एंटायर टीम, हमारे टीम में आप लोग हैं भाई, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और जीवी है, और अगर टीम बोल रहे तो आप है हमारी टीम, आप है हमारे फैमिली, दैट्स व्हाई से देयर यू केजे टीम की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे, और इस गीत में हम आपको याद करना चाहतेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जीवी जी आज स्वास्थ्य लाभ कर रही है, शी स्टिल रिकवरिंग, सो वी नॉट गोना पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हर टुडे, बट टाइम एंड अगेन इनकी जो प्यारी सुरीली आवाज है आपको भी सुनने को मिलेगा। यू लिस्निंग टू रेडियो केजे लोकल, ये गीत खासतौर पर से नीरज जी आपके लिए। यू लिस्निंग टू रेडियो केजे लोकल ओनली ऑन
1: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: KJ Local, you're listening to us on Plains Media 96.9. जो गाना पहले बज रहा था वो Christchurch Men's Prison नीरज जी के तरफ से डेडिकेटेड था फॉर हिज सन एज ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. वी नो नीरज जी के कितना मुश्किल होगा जब आप अपने बेटे के साथ नहीं हो, बट आपका मैसेज हम आपके बेटे तक, आपकी फैमिली तक जरूर पहुंचा देंगे.
1: जी बिल्कुल, दिस इज रेडियो KJ का यही काम है. हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, हमेशा हम ये करते हैं और वी आर जस्ट लाइक यू गाइज. बस म्यूजिक का थोड़ा सा ज्ञान है और बात करने का थोड़ा थोड़ा सा टैलेंट आ गया, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं. तो यस प्लीज बी यू नो, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है. कभी भी आप किसी को याद करना चाहते हैं, बेहतर डेडिकेशन देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें याद कर सकते हैं.
0: प्रदीप जी ये भी कह रहे हैं कि प्रदीप जी हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम फीजी जुड़ गए, आज उनकी बेटी का भटवान नाइट है और कल उनकी बेटी का शादी है, साथ ही साथ उनके ग्रैंड डॉटर मायरा करण, जो वेरी प्रिटी मायरा. अभी रिसेंटली हम किसी मायरा से मिले थे,
1: मायरा खान है ना, मायरा वो है ना जो हांगकांग से आई थी ना.
0: यस, छोटी सी मायरा जो केविन और श्रद्धा की नीस थी. उनके ग्रैंड डॉटर भी आए हुए, मायरा करण हु केम फ्रॉम मेलबर्न विथ हर मम प्रीतिका करण. सो मायरा को, प्रीतिका को और आपकी बेटी को एंड आपकी प्यारी सी वाइफ को भी हम याद करना चाहते हैं रेडियो KJ लोकल पर.
1: जी हाँ डेफिनेटली प्रदीप जी, फिजी में जब भटवान नाइट होता है, आज का नाइट होता है, बहुत गाना होगा, बहुत सेलिब्रेशन होगा. नो फिजी का जो टिपिकल वेडिंग फूड होता है, आलू बैगन पूरी, ये सब तो इंजॉय हमारे शेयर भी खा लेना. दिलेश ऑफकोर्स ब्रो, दिस इज योर्स, आप बोलिए क्या चाहिए. चले आगे स्पॉन्सर्स को याद कर लेते हैं इससे पहले कि हम भूल जाए. MCKEA, NZ MCKEA, लोरेंजली मने जी, रॉबर्ट जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें हेल्प करने के लिए. विना का एसवी से इन्फ्यूजन कमिंग ऑन बोर्ड, रामायण का बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले कि यू वांटेड टू सपोर्ट अस, थैंक यू. आप भी अगर किसी को जानते हैं, अभी MCKEA का हमने नया उद्योग, सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, अब बच्चों के लिए भी. इफ़ यू नीड, इफ़ यू नो एनीवन जिनको केयर की जरूरत है आपके घर पे, ये नाम हमेशा याद रखिए गाइस, यू नेवर नो व्हेन यू विल नीड इट. MCKEA NZ. नैथन मिगलानी जी फ्रॉम स्कूरल साउथ आइलैंड, नैथन जी कैसे हैं, मोगज के तलाश में, तो नैथन नाम जरूर याद रखिए. आगे बढ़ते हैं जी, ओके.

0: I'll continue. Fin, fair event planners, booking across bed days, baby showers, cultural events, corporate setups, reliable wedding decor. Jibi ji, aapka pyari सिल्की थॉमसन जी डेकोरेशन ऐसे कर दी थी. अभी तो हर दूसरा इवेंट इनका रहे भाई, हर दूसरा इवेंट ये कर रहे हैं.
1: ये रामायण का भी हिस्सा है. सो अगर आप इवेंट डेकोरेशन के बारे में सोच रहे हैं, डू कॉन्टैक्ट सिल्की शर्मा फ्रॉम फैनफेयर इवेंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन, बिग और स्मॉल. शी विल बी देयर विद हर टीम.
0: इनके साथ साथ शिवम अरोरा फ्रॉम NZ इंश्योरेंस. यार इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होता है. अभी हम जब प्रदेश जा रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस का होने का कितना फायदा है. हम वेल वीकली या मंथली ये पेमेंट करते हैं, सोच करिए क्या भर रहे हैं, पर आपको यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाएगी. तो शिवम अरोरा NZ इंश्योरेंस नाम याद रखिए. और बहुत ही जल्द ये भी हमारे साथ स्टूडियोज में शामिल होने वाले हैं. और इसके साथ साथ चले आगे बढ़ते हैं. पीपी प्रोडक्शन, हमने ऑलरेडी बात किया था लास्ट वीक. पीपी प्रोडक्शन हमारे साथ शामिल थे, वेरी टैलेंटेड गाय. फोटोज वीडियोज के लिए पीपी प्रोडक्शन नाम जरूर याद रखिए. यूनिक एथनिक कलेक्शन वी वेंट देयर टुडे.
1: जी हां, यूनिक एथनिक कलेक्शन में हम आज ही मिलने गए थे मनप्रीत जी से एंड उनके हस्बैंड से. हमारी ऐसे याददाश्त खो रही है, ऐसे हमें फील हो रहा है.
0: जी हाँ, आज हम गए थे यूनिक एथनिक कलेक्शन. वैसे तो हम वहां पर गए थे अपना रेडियो का काम करने के लिए, पर इनका जो जो क्या कहते हैं, जो टिपिकल पंजाबी खातिरदारी और हॉस्पिटैलिटी है अपमोस्ट. हम सिर्फ यू नो रेडियो का वीडियो करने गए थे, पर हमें एक प्रॉपर फोर कोर्स थ्री कोर्स लंच मिला स्टार्टर्स के साथ साथ, यू नो मेंस के साथ साथ कुछ आधा,
1: साथ ही साथ हमको तो दवाई भी मिला वहां से.
0: एग्जैक्टली. सो थैंक यू. अगर आप दोनों सुन रहे हैं, मनप्रीत और जसपाल जी.
1: जी, मनप्रीत और जसपाल जी, थैंक यू सो मच. दिस इज द पार्ट ऑफ रेडियो KJ लोकल जहां हमारे स्पॉन्सर्स सिर्फ हमारे स्पॉन्सर्स नहीं रह जाते, वो हमारे रेडियो KJ लोकल का फैमिली बन जाते हैं. यूनिक एथनिक कलेक्शन, वी शुड से सम ऑफ देम ओवर हियर ऑन दैट लिस्ट. यूनिक कलेक्शन जो है, जब से हमने रेडियो शुरू किया, जिस पहले दिन से लेकर अब तक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं.
0: Always supporting us.
1: हाँ, हमेशा हमें सपोर्ट किया है, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया है हमें. सो थैंक यू सो मच आपकी खातिरदारी के लिए. हम तो वहाँ एज अ स्पॉन्सर और रेडियो KJ लोकल के मुलाकात के लिए आए थे, बट जिस तरह आपने खातिरदारी की, थैंक यू सो मच फॉर दैट.
0: जी हाँ रिका, ऑलवेज गुड टू हैव जीबी बैक इन द स्टूडियोज. हमारा काम भी आसान हो जाता है, वरना हमें अकेले बात करना पड़ता है. चले आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल फ्रेश, ये जी हाँ वीकेंड्स आ चुका है, या वीकेंड स्पेशल फीजी से यहाँ फ्रेश वेजेस. कल सुबह सुबह चेक आउट आवर पेजेस एज वी स्टे ऑन रेडियो KJ पे. हम शेयर करने वाले हैं कि ग्लोबल फ्रेश में क्या स्पेशल्स है, तो ये नाम जरूर याद रखिए. डीजे गिडियन, पिछले वीक सैटरडे को हमने एक इवेंट किया डीजे गिडियन के साथ, हमेशा ऑलवेज वेरी रिलायबल. इनके जो साउंड्स है, इनके जो म्यूजिक सेलेक्शन है, और क्लास्टिक यू नो बीइंग फ्रॉम फीजी, डीजे गिडियन ने गुजराती इवेंट किया एंड आई एम प्रीटी श्योर दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड ईदर. तो आपके अगले इवेंट के लिए एक अच्छे डीजे के तलाश में डीजे गिडियन इज द नेम. करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल, गाइस प्यारा सा लाइट घर में चाहिए. अभी लॉन्ग वीकेंड है, कुछ मरम्मत कराना है, कुछ लाइट बदलना है, चेंज कराना है. सिर्फ वही नहीं, आपका नया घर बना रहे हैं, इसमें आपको एक डिफरेंट टाइप का लाइटिंग चाहिए, तो जॉन जी फ्रॉम करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल. बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीले फ्रॉम SBG अकाउंटिंग. यस, अकाउंटेंट के तलाश में है, तो नीले जी को जरूर याद रखिए. कभी भी अकाउंटेंट की आपको यहाँ पर क्राइसिस में जरूरत है, नीले धमलिया एक बहुत ही रिलायबल नेम और एक ऐसा नाम अगर आप देखेंगे जब भी यहाँ पर क्राइस्टचर्च इंडियन ग्रुप में कोई भी डालता है कि लुकिंग फॉर अकाउंटेंट, सबसे ज्यादा लोग नीले जी को ही टेक करते हैं. जीबी जी.
1: जी बिल्कुल. एंड हमारे भी रिलायबल अकाउंटेंट है एंड रिलायबल पर्सन हु वी ऑलवेज रेकमेंड. जब भी कोई हमसे पूछता है स्मॉल या बिग बिजनेस, वी डू रेकमेंड SBG अकाउंटिंग, नॉट ओनली एज आर स्पॉन्सर, बट वी नो प्रैक्टिकली हिज वर्क एंड हिज वर्क एथिक्स. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अकाउंटेंट, SBG अकाउंटिंग इट इज.
0: जी हाँ, कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. आप सभी को हम बारी बारी से याद करते हैं. और प्रदीप जी, आई डोंट नो आप हमें अभी भी सुन रहे हैं, पर आपके लिए, आपके डोटा के लिए, मायरा के लिए, प्रतीका करण के लिए, आप सभी के लिए, आज आपकी डोटा की जो वतवान नाइट है, तो वतवान में अगर वहाँ पे DJ बज रहा है, और अभी क्योंकि अभी इट्स ओनली 6:30, सो शायद अभी तो शहनाई बाजा हो रहा होगा, लोक गीत हो रहा होगा, पर जब DJ वहाँ पर फीजी में, क्योंकि आई यूज टू बी DJ इन फीजी, तो बिफोर वी गेट इन टू द डांस mode which is normally after 9, aise geeton se hum shuru karte the. You're listening to Radio KJ Local only on
1: Plains Media 96.9.

0: जी बिल्कुल, तेरा यार हूँ मैं, ये गीत खास तौर पर से हमारे जो यार उधर क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से हमें हर संडे और फ्राइडे को रिलीजियसली सुन रहे हैं. नीरज जी, आपके लिए, आपके सभी दोस्तों के लिए ये गीत. जी जी, आप कुछ बोल रहे थे रिगार्डिंग सिक्स पैक्स.
1: सिक्स पैक सोनी थी, आपको क्यों इनका सिक्स पैक्स देखना है? आपके पास है ना एक लंबू सा ताड़ सा बंदा.
0: फिर तो कभी नहीं दिखी ना वो, तो वो पकड़ उसने पकड़ लिया ना.
1: क्या फिर तो कभी नहीं दिखाई? हाँ. क्या आपके सिक्स पैक्स के बारे में बोल रहे? अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं वो.
0: 30th फेब को है ना.
1: दिलिश मी टू, आई हाइड माइन एज वेल. आई कैन सी व्हाट यू शो.
0: फेब को दिखाते हैं.
1: या बाय बाय द वे, फॉर द रामायण क्रू, इफ यू गाइस आर पार्टिंग दिस वीकेंड, बिकॉज वी हर्ड सम ऑफ यू गाइस आर पार्टिंग ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, मेक श्योर संडे मॉर्निंग वी डोंट गेट एनी सिक कॉल्स. Dilish ke birthday ke baad we had few sick calls, so we don't expect that sick calls on Sunday morning, please, because
0: when now we know where you live.
1: Yeah.
0: जी हाँ बिल्कुल, ये हम आकर वहाँ पर आपके घर से ही लेकर जाने वाले. यस, आज हम एक बार फिर हमारे सारे स्पॉन्सर्स को हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, खास तौर पर से हमारे फ्राइडेज के और हमारे मंडे फनी रील्स के द स्पॉन्सर जगी भोपाल फ्रॉम अरिस्टो रियल स्टेट इज विद अस. जगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वी वेटिंग फॉर यू टू कम बैक इन द स्टूडियोज वेयर वी विल टॉक मोर. दिलीश जी का मैसेज पढ़ते हैं.
1: व्हाट ये कब हुआ? ये तो हमें किसी ने नहीं बताया कि आप लोगों ने रील बनाया उस दिन. Make a reel that day.
0: Yeah.
1: Nobody told me about that.
0: इस रील में एक्चुअली हम for the first time, just because normally आप रहते हो तो हमें हीरो बनने का मौका नहीं मिलता, उस दिन I became hero.
1: Really? आपने लिया वो रील? रील किसने लिया?
0: आपके फेवरेट ने ना, श्रुति ने ना.
1: श्रुति ने लिया रील? हमने तो देखा ही नहीं अब तक, तो कहाँ है वो रील?
0: ये स्पेशल आई थिंक ये भी 30th फेब को ही रिलीज होगा. नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जाने के बाद हुआ. 11 हो, हम आ गए थे ना आपके लिए खाना लेकर.
1: विल डू नो शो, प्लीज नो दिल, वी रिलाई ऑन यू. यू आर लाइक अ एल्डर मैच्योर एडल्ट, यू शुड बी लाइक नो गाइस कम ऑन. आई हर्ड दैट यू डिड स्कोल्ड वन ऑफ द क्रू मेंबर के क्या तुम संडे को काम जरूरी है यार.

0: And जरूरी है. I heard that you didn't.
1: Even Dilish is like I've known Nalia for a long time and he's not somebody who like even हमें पता है कि जब घर पे हम celebrations के लिए जाते हैं, it's quite hard to make him say any word. You know, he's a little shy guy, but I'm so proud of him too. Yeah. Like आकर stage पे in the role he took well. Heads off to you. ये कहते हैं कि कोई भी वो कहते हैं ना शाहरुख खान का वो dialogue है ना अमी जान कहती है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. इसी तरह से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है
0: जी.
1: You know, taking up the responsibility, heads off to him.
0: जी बिल्कुल and we are very very proud of you and also proud of the role that you're going to play in Ramayan and I'm actually looking forward because I haven't yet seen you doing the character.
1: Oh, yeah,
0: no, nice I bit. Haven't yet seen you doing the character because I've been busy with the girls but and I don't think I'll get to see you on the stage either but I'm sure that someone would record this and I'm so proud of you brother.
1: Yes, बिल्कुल. तो जितने लोग हमारे साथ उधर फ्रीक्वेंसी पे जुड़े हैं अगर आप सोच रहे हैं कि नाउ इन देन हम किससे बात करने लगते हैं जी, हम अपने आप से नहीं बात कर रहे हैं. हमारे साथ कुछ लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो उन्हें भी हम कुछ ना कुछ डेडिकेशन दे देते हैं. बट आप लोगों को हम नहीं भूलेंगे. 96.9 वालों, आपको इस गीत में हम याद करना चाहते हैं. और जब हमने जीबी जी को पहली बार देखा था टिमिला डांस अकेडमी में डांस करते हुए और एक गीत हमारे मन में उसी शाम को आ गई थी तो ये गीत में हम जीबी जी को याद करना चाहते हैं. टिमिला डांस अकेडमी के फोमा एंड करंट डांसर्स को याद करना चाहते हैं और बाकी भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं. यू आर लिस्टिंग टू रेडियो के जलोकल
0: ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9.

0: वेलकम बैक टू रेडियो KJ लोकल. यू लिसनिंग टू अस ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9. कृषि, आप अभी भजन क्लबिंग के बारे में कुछ बोल रहे थे एंड अबाउट द हाउ वी गेट आवर कल्चरल एंड रिलीजियस थिंग्स टू न्यू जनरेशन. इसको एक क्विक तरीके से, ये राम जी और सीता जी का जो अभी आपने बोला,
1: राम जी से, बस सीता माता ने राम जी से पूछा कि कलयुग क्या हो?

0: तो कलयुग में राम जी ने कहा कि हमारे जो नई पीढ़ी है, जो अभी की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, ये धर्म से दूर जाएंगे, इनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट होगा सुपरमार्केट, आई मीन मॉल घूमना, पार्टीज में जाना, क्लबिंग, मंदिर कम जाएंगे, मंदिर भगवान के बारे में। तो सीता माता ने पूछा क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप लोग से ही सीखेंगे, क्योंकि आप फोन पे बैठे रहेंगे, आप उनको बताएंगे नहीं ना। हालांकि बात है कुछ कुछ माताएं पिता है। तो सीता माता ने पूछा ये बदलेगा कैसे, तो राम जी ने यू नो मुस्कुरा कर बोले कि बदलेगा, क्योंकि आप में से या इनमें से कोई ऐसे संत माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को पूजा पाठ के बारे में सिखाएंगे, और इसी में से कोई ऐसे संत होंगे जिनके पास मेरे द्वारा ही राह दिखाया वाला कुछ ऐसे क्रिएटिव माइंड आ जाएगा, जहां पर ये भजन क्लबिंग करेंगे, क्योंकि भजन क्लबिंग लिटरली इज वो। हमें पता है कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बट आप राम का नाम ले रहे, कृष्णा के नाम ले रहे
1: जी। इसी तरह आपको भी एक इनोवेटिव वे अपने कल्चर से जुड़ने के लिए, भजन से जुड़ने के लिए एक इनोवेटिव वे और क्रिएटिव वे में जुड़ना है, तो आपको जाना है भजन क्लबिंग जो हो रहा है 8th of August, Elders Gate से, book your tickets now.
0: और इसी के बारे में संडे को do join us, संडे को हम शायद एक छोटा सा horror story भी लेकर आएंगे, और संडे को we will talk more about it, क्योंकि रामायण लाने का मकसद क्या था, रामायण एक नई तरीके से हम लेकर आ रहे हैं, और इसमें आपको 2 घंटे जो आप हमारे साथ बैठेंगे with a very reasonable amount of ticket, इसमें आपके लिए, आपके बच्चे के लिए क्या फायदा है, so definitely join us on Sunday. Okay guys, that's it for another Friday. We're looking forward to seeing all of you on Sunday. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं हूँ आपका साथी आर्य कृष, साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल, विद अ वेरी गॉर्जियस
1: आर्य जी भी, बाय।